मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हेलो नमस्कार, 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो पालनपुर पर आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। हूँ छु आरजे एआर अने लईने आवु छु डॉलर बहु नवलकथा। सुधामूर्ति लिखित अने सुधा मेहताए जेने गुजराती में अनुवादित करी छे ते नवलकथाना अंशों ने जीवन में वर्षो पहला लखायेली पोतानी केटलीक पारिवारिक अनुभूतिओ मित्रोनी वातो अने ए समयना एक सामाजिक कार्यकर्ता तरीकेना पोताना विचारों ने निरूपण करती सुधामूर्तिनी आ नवलकथा।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमय दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल,
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी,
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन

0: ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं।

0: छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा?
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें ऑडियो

0: podcast@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है। इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
1: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा

0: दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
1: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूंटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज, अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या, तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञदत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
4: जी पिताजी।
3: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
4: वो पिताजी।
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई, कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
4: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
4: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
5: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
4: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
5: हाँ।
4: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में, उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
5: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
5: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी,
5: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
3: बहुत अच्छा।
5: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
4: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
5: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
5: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
5: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
5: अच्छा
4: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
1: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
1: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
4: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली, पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
2: और क्या
4: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
1: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
4: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे, अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
5: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना, आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
4: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
5: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
4: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
5: हाँ।
4: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो, क्या रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बाके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
0: लगता नहीं जीतेगा।
2: वो पहुंच गया। इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
2: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
2: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो, कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।

0: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
1: हाँ इसे पकड़ लेते हैं, चलो
2: चलो।
1: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
2: अरे ये पकड़ा।
0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
3: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
2: क्या
0: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, तो अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
4: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाळ मित्रों नु स्वागत करू छु बाळ सभा मां।
5: कागड़ो काड़ो केम छे। घणा वर्षो पहला पक्षियों मात्र सफेद रंगना ज हता। एनाथी कोई ने खबर पड़ती नहीं कि कयू पक्षी कया प्रकार नू छे। अने तमेज विचारो, सफेद पक्षी लीला झाड़ पर थी तरस देखाई जतो। इतले शिकारियों माटे बहुज हेलू हतु कोई पण प्राणी अने पक्षियों नू शिकार करवो। आ विचारीने बद्धाज पक्षियों डरवा लाग्या हता। चकली, पोपट, घुवड़, मोर, गरुड़ बद्धाज ए जग्याए भेगा थया अने तेमने भगवान ने आ समस्या कही। भगवान ने बद्धीज वा सांभड़ी अने ए बद्धानी प्रॉब्लम ने समझ्या अने कयू,
6: प्रिय पक्षियो, हवे हूँ रंगो बनाविश। तमे बधा 8 दिवस पछी मने मळो, हूँ तमने जुदा जुदा रंगो आपीश।
5: बधा ज पक्षियों ए दिवस नी राह जोवा लाग्या अने ए दिवस जल्दी जावी गयो। बधा ज पक्षियों ने एक बीजा ने बोलावी लीधा। बधा भगवान पासे पहुंची गया। सौथी पेला पोपटे कह्यू,
7: डियर गॉड, हूँ लीला झाड़ पर रहू छू, तो तमे मने लीलो रंग आपो। आथी हूँ शिकारी ने देखाईश नहीं अने मने लाल मरचू बहु गमे छे, तो तमे मारी चाच लाल बनाओ।
5: भगवाने कह्यू,
6: ओके।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

बाक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतू रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी न्यू ओल्ड किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जग आकु झुकव नारी।
1: अबड़ा नहीं तूज सबड़ा नारी। आ समय तो पानी ना रेला नी जेम कहवाय भाई, तमे वहवा दो तो रेलाई ने समंदर सुधी पहुंचे, ने बांधी दो तो सड़ी ने सुकाई जाए, सुकाता पहला गंधाई जाए, पण पटोळानी भात गूंथवा दिवस रात शमणा ज्योति आपणी कसुंबी झूकवा नोती जन्मी, ने बंधाई ने नियमोना जड़ बंधनो पकड़ी ने सड़वा सुकाई जवा पण नोती जन्मी। एने तो जीवन रस ने समय रस मां भेड़वी जाण्यो। समय वीतवा लाग्यो। एक समी सांजे मोगी पोतानी दीकरी कसुंबी ने रोटला घड़ता शीखवी रही हती।
2: बेटा रोटला घड़ता शीखी लो, क्यारे तारा सासरिया तेड़ावे ने क्यारे तारे जवानु थाय।
3: बा आ रोटला मां जोने केवी भात पड़े छे नहीं
2: है। रोटला मां वड़ी शेनी भात होय
3: आजो।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

तो मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और इस एपिसोड में कुछ ऐसे गाने आप तक पहुँचेंगे जो ऐसे बादल हैं, सिर्फ गरजते नहीं साथ बरसते भी हैं। पहला गाना जरा ब्लैक एंड वाइट है और इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले राज कपूर साहब ने नरगिस जी के साथ मिलकर रिहर्सल की, डांस करके दिखाया था मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी को कि भाई इस तरह का रोमांस है, ये आना चाहिए गाने में, नहीं आया तो फिर बात नहीं बनेगी। और उस डांस रिहर्सल के बाद राज साहब और नरगिस जी को उस रोमांस में देखने के बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। गाना कौन सा है साहब, आप समझ गए, श्री 420 का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने और उसके बाद एक बेहतरीन किस्सा आपको सुनाऊंगा। कि बरसात वाला ये गाना था, हीरो तो खूब नाचा पर हीरोइन फूट फूट के, कौन सा था वो गाना, कौन था ये हीरो हीरोइन बताता हूँ। लेकिन उससे पहले प्यार हुआ, इकरार हुआ,

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप उस पर बरसाती गाने सुन रहे हैं और इन गानों के जो जज्बात हैं उनमें हम भीग रहे हैं। मामला बड़ा रोमांटिक भी है। अभी जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पर बरसात वाला ही गाना शूट किया जा रहा था। हीरो तो खूब नाचा, खूब खुश हुआ, पर हीरोइन फूट फूट के रोई। बात दरअसल यूं रही कि ये वो हीरोइन रही जिन्होंने शुरुआत की थी आर्ट सिनेमा से, और मन करता था कि हमेशा सीरियस तरीके का ही सिनेमा किया जाए। लेकिन जब कमर्शियल सिनेमा में आई और ये बारिश वाला गाना इनके सामने रखा गया तो पहले तो इन्होंने ज़रा ना नुकुर की, पर हीरो ने समझा लिया कि नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हीरो भी बहुत बड़ा, इसे ना करना बड़ा कठिन था, तो उस हीरो के साथ इस गाने की शूटिंग तो करी। शूटिंग के बाद ये रोने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों इस तरह का कमर्शियल सिनेमा कर रही हूँ, क्यों बारिश में भीगती हुई नज़र आ रही। फिर हीरो इनके पास गया और कहने लगा कि ये एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है, ये हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे हैं और इसमें कोई भी मूव ऐसी नहीं है जिससे लगे कि मामला बदसलूकी का है या वल्गर है। तब जाके हीरोइन की जान में जान आई, और जब इस गाने को पब्लिक ने देखा तो सभी ने सराहा और कहा कमाल का काम किया। हीरो अमिताभ बच्चन, हीरोइन स्मिता पाटिल। गाना सुन लीजिए आप, समझ जाएंगे। फिल्म का नाम बता दूँ आपको, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इस गाने

सुनेंगे और फिर बताऊंगा कि कैसे मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया था और फिर वो गाना बनाया कि राज कपूर भीगे भीगे भागते रहे नाचते रहे। बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आज रबड़ जाए आज।

0: दे के हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया। ऐसी बात कह दी जिसके बाद राज साहब जो हैं वो बारिश में भीगते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। क्या मामला है ज़रा बयां करता हूँ। देखिए हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब के बड़े भाई ने इनसे कहा कि भाई तुम भी कोई फिल्म में बनाओ, क्या कर रहे हो, कब तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहोगे। तो मनमोहन देसाई साहब ने कह दिया कि भाई साहब आप राज कपूर और नूतन इन दोनों को ले आओ, इन दोनों के साथ ही फिल्म बनाओ।
1: अच्छा चलो बात करके आते हैं।
0: भाई साहब और मनमोहन देसाई पहुँचे, राज साहब से बात की। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो फिल्म में काम करने में बुराई नहीं है, पर तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, इसने काम ही क्या किया, 20-22 साल इसकी उम्र है, ये क्या फिल्म बनाए। तो देसाई बंधुओं ने कहा कि राज साहब जब आपने पहली फिल्म बनाई थी तब आपकी क्या उम्र थी। तो राज कपूर सुन के हैरान रह गए, हाँ मतलब मैं भी 20-22 साल का ही था, मैं मतलब तो जब आप बना सकते हैं तो एक नौजवान की मदद नहीं करेंगे, आप एक गाना तो शूट करके देखिए, इस गाने में अगर आपको मजा ना आए तो फिर आप फिल्म से बाहर चले जाइएगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। राज कपूर तैयार हुए, गाना शूट किया गया और फिर ऐसा डम डम डिगा डिगा हुआ कि राज कपूर साहब ने कहा कि नहीं फिल्म में तो काम करूंगा। और उसके बाद मनमोहन देसाई ने भी पलट के नहीं देखा, अपने काम से ही राज कपूर का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम छलिया। ये बात तो आप समझ गए ना, सुनते हैं राज।

साहब गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बेहतरीन गाने और कुछ बड़े ही अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब अमृता सिंह, जबरदस्त अभिनेत्री अमृता सिंह, लेजेंडरी दिलीप कुमार के रिश्ते में आती, ये बात बड़ी अजब सी लगती है ना। देखिए क्या हुआ, अमृता सिंह जी की जो नानी रही जरीना, वो गुजरे वक्त की जबरदस्त अभिनेत्री बेगम पारा की बहन रही। बेगम पारा कौन हुई, ये इन्होंने शादी की नासिर खान से, नासिर खान दिलीप कुमार के छोटे भाई, और ये बेगम पारा से जुड़ी जाके अमृता सिंह जी, और इस तरह से इनडायरेक्टली ही सही ये दिलीप कुमार साहब के रिश्ते में आ गए। और इनके कज़न हैं कौन, अयूब खान, अयूब खान जिन्होंने फिल्मों में भी नाम कमाया और टेलीविज़न पे भी बड़ा नाम कमाया। अब बताओ फिल्म इंडस्ट्री में कौन किससे दूर रहा है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी कोने में सब रिश्तेदारी के बंधनों में बंध ही जाते हैं। ये बड़ी अनोखी सी बात, बड़ी ढूंढ के निकाली है, अभी आप तक पहुंचाई है। और अभी अमृता सिंह का जिक्र हुआ है तो एक गाना मैं सुनाता हूँ जो इनकी पहली पिक्चर से है और कमाल का है, बादल गरज रहा है। अब देखते हैं कितना डर लगता है इसमें, सुनते हैं इस गाने को और फिर बताऊंगा कि कैसे एक हंसती गुनगुनाती लड़की रोने भी लगी और उसे जीवन साथी भी उन आंसुओं और उस हंसी के बीच मिल गया। लेकिन अभी बेताब से ये गाना।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी जरा ले चलता हूं आपको उस वक्त में जहां पर एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री जो बिना किसी बात के भी हंस सकती थी, बड़े से बड़ा एक्टर उसके सामने आ जाए और ये हंसने लगती थी, और शूटिंग के बीच में हंसती थी, सब परेशान होते थे और लगता था कि इसे साथी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, पर हाँ, इसकी जिंदगी में प्यार आया। एक बड़ा ही चुलबुला लड़का जो बड़ा अच्छा गाता भी था और अभिनेता भी था। अब इन दोनों ने शादी का फैसला किया, पर ये लड़की बहुत बीमार रहती थी और इसके वालिद ने कहा कि भाई पहले ज़रा लंदन ले जाया जाए, इसे इसका इलाज कराया जाए, उसके बाद तुम दोनों शादी करना, अभी मत शादी करो। लेकिन हीरो जो था वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं साहब, शादी का फैसला किया है तो पहले तो शादी होगी, उसके बाद इलाज किया जाए। इस तरह से आंसुओं के बीच इस हीरोइन को खुशी मिली, शादी हो गई, लंदन गई भी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ज़्यादा ये जिएगी नहीं, और जो भी पल हैं इसे खुश रखने की ज़रूरत है। और कुछ वैसा हुआ भी, तो बाद में ज़रा बात बिगड़ी भी। पर सवाल ये है कि ये हीरोइन कौन और हीरो कौन, समझ तो गए हैं आप। हीरोइन मधुबाला और हीरो किशोर कुमार। ये बड़ी अनोखी कहानी, ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें तो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अभी एक लड़की भीगी भागी सी है, मामला ज़रा रोमांटिक सा है, और इस रोमांस के नाम पर ही किशोरदा और मधुबाला जी को हम याद करते हैं। चलती का नाम गाड़ी से।

शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतो एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM.

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।